0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा?

मैंने सुना है कि जब लोग प्रे करते हैं या जोर से हंसते हैं, रोते हैं या फिर किस करते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं। क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ दिल से महसूस की जाती हैं।

0: ऐसा क्या?
1: अब तुम करके दिखा, कैसे बोलोगे?
2: How do you do?
1: How do you do?
2: I love you.
1: ओहो, I love you इतनी जल्दी नहीं रे बाबा।

0: like you.
1: हाँ, अब तुम्हारे भेजे में बात आई, अब आगे बढ़े।
2: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो,
3: अरे तू भी चुप हो जा।
2: खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
1: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
4: ऐसा क्या?
1: हाँ।

0: Saturdays, 6 to 9 p.m.
1: अरे मामा मामी, अरे काका काकी, अरे हम तो के अभी एक कहानी सुनाऊंगा। हाँ हाँ, एक कहानी सुनाऊंगा। अरे हम जब एक दिन रास्ता पर चला था तो हम एक लड़की के घर पहुंचा था। हाँ पहुंचा था, तो हम वहां पर गया था और देखा था उस लड़की बहुत सोच में था। तो हम पूछा है, ये लड़की काहे के तू सोच में है रे? तो लड़की बोला, हम मालूम नहीं है कि हमारा माई बाप तो कहाँ गया है। तो हम बोला, अरे पगली, हम तो क्या बताता है तेरा माई बाप तो कहाँ गया थे। उस लड़की के पास बहुत सुंदर नाम था, उसके नाम मोनिका।

तो ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।